0: South Asian.
1: Music MG. तुझे बीच सड़क में रोके दूंगा मौके देखने के मेरे शो के It's okay, तेरे पीछे पड़ा हूँ लाखों लड़कियों के

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online, and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: SBS Hindi के दैनिक रेडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है. ये है 9 जून की एक ढलती हुई शाम और आप सभी को वृषाली जैन का प्यार भरा नमस्कार. कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद मस्त होंगे. आज का SBS कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों, कैमरागिल राष्ट्र के लोगों और उनके बुजुर्गों को

0: Hits from Home.
1: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds? Especially if it's more than 5 years old. For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: ऐसे ही लोगों से बात करेंगे तो बताइए मुझे 04397997 पर. जब तक आप मुझे भेज रहे हैं संदेश, आइए चलते हैं किसकी तरफ, संक्षिप्त समाचार की ओर वैशाली जैन के साथ. पेश है आज के संक्षिप्त समाचार वैशाली जैन के साथ. राष्ट्रीय विकलांगता बीमा योजना यानी NDIS में प्रस्तावित बदलावों को लेकर फेडरल सरकार को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. इस विषय पर गठित सेनेट जांच समिति की सार्वजनिक सुनवाई शुरू हो गई है. विकलांगता अधिकार समूहों का कहना है कि उनसे पर्याप्त परामर्श नहीं किया गया और प्रस्तावित कटौतियों से कई प्रतिभागी आवश्यक सहायता से वंचित हो सकते हैं. ग्रीन्स पार्टी के प्रवक्ता जॉर्डन स्टील जॉन ने सुधारों की विस्तृत समीक्षा के लिए जांच अवधि बढ़ाने की मांग की है. वहीं विपक्ष के नेता एंगस टेलर ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि गठबंधन सरकार के प्रस्तावित बदलावों का समर्थन करेगा या नहीं. फेडरल बजट में अनुमानित बचत का एक बड़ा हिस्सा NDIS खर्च में कटौती पर आधारित और सरकार संसद में शीतकालीन अवकाश से पहले इस विधेयक को पारित कराना चाहती है. इस बीच गठबंधन ने संकेत दिया है कि वे जांच अवधि बढ़ाने के मुद्दे पर ग्रीन्स के साथ समझौते के लिए तैयार हो सकते हैं. शैडो NDIS मंत्री मेलिसा मैकिंटोश का कहना है कि गठबंधन ने इस जांच की मांग के लिए कड़ा संघर्ष किया था. वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री डॉन फारेल ने अमेरिका के उस दावे को खारिज किया है जिसमें जुलाई से लागू होने वाली प्रस्तावित 12.5% शुल्क को मॉडर्न स्लेवरी संबंधित चिंताओं से जोड़ा गया है. ये प्रस्तावित अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रियर ने उस जांच के तहत रखा है जिसमें वॉशिंगटन ने 60 देशों पर कथित अनुचित व्यापारिक प्रथाओं का आरोप लगाया. EY के एक आकलन के अनुसार इन शुल्कों से ऑस्ट्रेलिया के निर्यातकों पर हर साल लगभग $1.6 अरब का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है. अंतिम फैसला आने में अभी कुछ सप्ताह बाकी हैं. इस बीच फारेल ने बताया कि पिछले सप्ताह पेरिस में उनकी मुलाकात अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ग्रियर से हुई थी. वहीं विपक्ष के नेता एंगस टेलर का कहना है कि यदि गठबंधन सरकार सत्ता में आती है तो वे आयकर में कटौती करेगी और आवास आपूर्ति बढ़ाएगी. उनका आरोप है कि लेबर सरकार की नीतियों के कारण ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए घर खरीदना और कठिन हो गया है. न्यू साउथ वेल्स में एक आवासीय परियोजना स्थल पर बोलते हुए एंगस टेलर ने कहा कि अधिक प्रवासन, महंगाई और टैक्स ने घरों की सामर्थ्य से जुड़ी चुनौतियों को बढ़ा दिया है. उन्होंने ये भी दावा किया कि सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं के कारण निर्माण लागत बढ़ रही है और नए आवासीय प्रोजेक्ट्स की रफ्तार धीमी पड़ रही है. और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार. न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में तेज तूफानी हवाओं और ऊंची समुद्री लहरों के कारण कुछ इलाकों में आपातकाल घोषित कर दिया गया है. वेलिंगटन सिटी काउंसिल ने लोगों से अपील की है कि जो निवासी निकासी क्षेत्र में हैं और अभी तक अपने घर नहीं छोड़ पाए हैं वे सुरक्षित स्थानों पर ही रहें. खराब मौसम के चलते न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों के बीच चलने वाली फेरी सेवाएं भी रद्द कर दी गई हैं. मौसम विभाग ने शहर के दक्षिण तट पर 9 मीटर तक ऊंची लहरों की चेतावनी दी है. वहीं लोगों को समुद्री तट की ओर जाने से रोकने के लिए पुलिस ने आसपास की सड़कों पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं. और अंत में खबरें भारत से. भारत में पश्चिम बंगाल में चुनावी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. पार्टी में बगावत तेज हो गई है और रिपोर्टों के मुताबिक अब तक 58 विधायक और करीब 20 सांसद नेतृत्व के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं. बताया जा रहा है कि बागी सांसदों का एक समूह NDA को समर्थन देने की तैयारी में है. वहीं कोलकाता नगर निगम में भी TMC को झटका लगा है जहां मेयर फिरहाद हकीम के इस्तीफे के बाद प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है. इस बीच ममता बनर्जी ने पार्टी की कई समितियां भंग कर दी हैं और हालात की समीक्षा की बात कही है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि TMC के सामने अब संगठन को एकजुट रखने की बड़ी चुनौती है. इसी के साथ 9 जून 2026 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं. दोस्तों संक्षिप्त समाचार के बाद अब आइए चर्चा करते हैं कि किस तरह से संस्कृति और भूमि से आपका जुड़ाव कई बार सदमों से उबरने में बहुत बड़ी सहायता कर सकता है. आज चर्चा कर रहे हैं टॉरेस स्ट्रेट के किशोर सैमुअल नाई की, जिनके लिए ये जुड़ाव शार्क के अब तक के रिकॉर्डेड सबसे ज़्यादा घातक हमलों में से एक हमले से उबरने में सहायता कर रहा है. क्या है ये पूरी

0: कहानी किस तरीके का रहा है ये हमला और क्या कर रहे हैं सैमुअल नाई जो 15 साल के हैं कुल जमा में, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पिछले वर्ष क्वींसलैंड के सुदूर उत्तरी क्षेत्र में एक किशोर पर शार्क ने हमला कर दिया था। कई सर्जरी और अस्पताल में महीनों बिताने के बाद उन्होंने असाधारण वापसी की है। SBS की टीम टॉरेस स्ट्रेट के थर्सडे आइलैंड पहुंची, जहां सैमुअल नाई अपनी धरती और संस्कृति से फिर जुड़कर उपचार और पुनर्वास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ वृषाली जैन और आइए सुनते हैं इस मार्मिक कहानी को आज और विस्तार से। टॉरेस स्ट्रेट के वाइबन या थर्सडे आइलैंड के सुनहरे समुद्र तट पर 7 लड़के एक लंबे पारंपरिक ढोल की थाप पर नृत्य कर रहे हैं। इनमें 15 वर्षीय सैमुअल नाई भी शामिल हैं, जो हाथ में शंखनुमा ट्रम्पेट शेल लिए हुए हैं। ये उनकी धरती और समुद्र से गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। 7 महीने पहले सैम की जिंदगी उस समय पूरी तरह से बदल गई जब घाट के पास तैरते हुए उन पर शार्क ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद सैम लगभग 20 मीटर तैर कर किनारे तक पहुंचे और अपने दोस्तों से मदद बुलाने को कहा। उनकी चोट इतनी भयावह थी कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उनके शरीर का बायां हिस्सा ही गायब हो गया हो। सौभाग्य से इतने गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी कोई महत्वपूर्ण अंग क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। इस किशोर ने अस्पताल में 4 महीने बिताए और इस दौरान 24 सर्जरी करानी पड़ी। जोय लाइफू सैम के सांस्कृतिक नृत्य प्रशिक्षक हैं।
1: We had to fly away. I was in ready to go over to Japan to dance over there. And on the way back, we heard about it. Yeah, it was a sad time for us. We didn't know what was happening and stuff. Then it worked out. He's back here with us, and I think that's amazing to see that of such a big event like that.
0: जोय लाइफू आइलैंड स्टार्स नामक एक समूह का संचालन करते हैं, जो नृत्य, गीत और कहानी कथन के माध्यम से टॉरेस स्ट्रेट की संस्कृति को जीवंत बनाए रख रहा है। ये पहल लड़कों को अपनी सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक टोटमों और भाषा से दोबारा जुड़ने का अवसर प्रदान करती है।
1: And that's why we do it, because it's a better understanding of what's out there and what you can utilize and what you pass down to your survival up in the Torres Strait and utilizing that to go down south. So that's very important for us to capture all our culture because it's our identity. Our language is our identity, our stories is our identity. We lose that, we don't have no identity. So actually practicing it and implementing it into our everyday life.
0: शार्क हमले से करीब 6 महीने पहले ही सैम इस समूह से जुड़े थे और इसके नए सदस्यों में से एक थे। मार्च में अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वे अपने घर लौट आए।
1: Within 2 days he was at our first dance training back here, engaging with us and wanted to continue his practice in culture. And so someone to go through that kind of experience and within 2 days of training come back and want to learn about our culture, then performing 2 weeks later. So that's showing you how a young person is really dedicated to know about his culture. So an event like that that happens, you know, people are rehabilitating themselves by seeing a shrink and stuff. He uses his culture to heal him, where he comes from, his ancestors to help him through his path.
2: So I know my background, where I come from, my tribe.
0: Townsville University अस्पताल के डॉक्टरों ने सैम के जीवित बचने को असाधारण बताया है। अस्पताल के सर्जन डॉक्टर ब्रेंडन ओकॉनर का कहना है कि ऑस्ट्रेलियन शार्क इंसिडेंट डेटाबेस से परामर्श करने के बाद उन्हें लगता है कि ये संभवतः शार्क हमले से हुई सबसे गंभीर चोटों में से एक है जिससे कोई इंसान जीवित बच पाया हो। डॉक्टर ओकॉनर के अनुसार सैम की चोटें जानलेवा साबित होने से महज कुछ मिलीमीटर दूर थीं। हमले में उनके पेट के बाएं हिस्से से बड़ी मात्रा में टिश्यू, मांसपेशियां, फैट और त्वचा नष्ट हो गई थी। सैम के लिए इस घटना ने समुद्र के साथ उनके रिश्ते की भी परीक्षा ली है। हमले के बाद से वे अब तक पानी में नहीं उतर पाए हैं। हालांकि वे अपने पारंपरिक टोटमों के बारे में

0: सीख रहे हैं। अब ओरिजिनल संस्कृति में टोटम एक पवित्र प्रतीक होता है जो किसी पशु, पौधे या प्रकृति के अन्य तत्व के रूप में व्यक्ति और समुदाय को उनके पूर्वजों, भूमि और आध्यात्मिक परंपराओं से जोड़ता है। सैम समुद्री भूमि यानी सी कंट्री से अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध को और गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं।
1: My favorite is the crocodile, the shark, and the turtle, green turtle.
0: सैम का परिवार कहता है कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ वही उनकी पहचान नहीं बनना चाहिए। उनके अनुसार शार्क हमला सैम की कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं।
1: I taught me to like when you go diving, you have to go diving at low tide.
0: और सबसे अहम बात यह है कि सैम आज भी वह काम कर पा रहे हैं जिनसे उन्हें सबसे ज्यादा लगाव है।
2: Why you have to dance hard?
1: So you feel good when you dance.
0: रिपोर्टर जॉश वैन स्टेडन पुलित्ज़र सेंटर की सहायता से थर्सडे आयरलैंड की यात्रा संपन्न कर सके। SBS न्यूज की इस खबर को SBS हिंदी से आपके लिए प्रस्तुत किया वृषाली जैन ने। और इस अंश के बाद कार्यक्रम में वक्त हो चला है पहले अंतराल का। अंतराल के उस पार करेंगे चर्चा OAM प्राप्तकर्ता उषा किरण चंद्रा से, लेकिन और भी बहुत कुछ होगा कार्यक्रम में। और आज मैंने आपसे ये पूछा है कि भाई एक कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको हमेशा इंस्पायर करते हैं। 04397997667 हमारा नंबर है, ज़रूर मुझे बताइएगा। आज बहुत सारी चर्चाएं हैं लेकिन उनका एक कॉमन थ्रेड अगर हम कह सकते हैं, एक कॉमन थीम कह सकते हैं, तो वो लोग जिन्होंने चुनौतियों के आगे हार नहीं मानी। तो बताइए मुझे चुनौतियों से हार ना मानने के लिए आपको कौन प्रेरित करता है। नंबर मैं बता चुकी हूँ, एक छोटे से ब्रेक पर जा रही हूँ, जल्दी जल्दी से वापस आती हूँ। आप अपने संदेश जारी रखिएगा।
3: SBS Chill पर दुनिया भर के संगीत के साथ आराम करें। SBS Chill सुनने के लिए SBS Audio ऐप पर जाएं।
4: SBS News इन डेप्थ पॉडकास्ट, देश और दुनिया भर के समाचार जो अहमियत रखते हैं, सुनिए SBS News इन डेप्थ आपके पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप पर या sbs.com.au/audio पर जाएं। अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्रों से लेकर क्लासिकल कल्ट फिल्मों तक, विश्व स्तरीय नाटक से लेकर गुदगुदाने वाली हास्य फिल्मों तक, देखिए SBS Wiseland चैनल 31 पर। SBS ऑन डिमांड पर सैकड़ों टीवी शो और फिल्में मुफ्त में उपलब्ध हैं। कहानियों की इस दुनिया को अपने फोन, स्मार्ट टीवी, टैबलेट या लैपटॉप पर देखें। आज ही SBS ऑन डिमांड ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं। जानिए SBS के टीवी और रेडियो चैनलों पर क्या चल रहा है और क्या आने वाला है। sbs.com.au/guide पर जाएं। SBS वर्ल्ड न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज और उभरती हुई कहानियाँ जो आपके लिए मायने रखती हैं, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर से, देखिए SBS वर्ल्ड न्यूज हर रात 6:30 बजे SBS और SBS ऑन डिमांड पर।
5: SBS Audio
6: अपने मनपसंद ऑडियो को सुनने के लिए प्ले दबाएं।
7: यही ज्यादा दिया। चुनबे हालम।
8: SBS Chill.
9: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है।
12: Far from the partisan politics.
13: 60 से अधिक भाषा में समाचार के साथ आपके मूड से मेल खाने वाला संगीत और मनोरम पॉडकास्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। SBS Audio ऐप डाउनलोड करें या फिर
5: sbs.com.au/audio।
0: ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर। आप सुन रहे हैं वृषाली को और अब आइए चर्चा करते हैं इस साल के किंग बर्थडे ऑनर्स की। भाई बहुत सारे भारतीय ऑस्ट्रेलियाइयों को इस साल हमारे किंग्स बर्थडे ऑनर्स की लिस्ट में शामिल किया गया है और ऐसा ही एक नाम है उषा किरण चंद्रा का भी, जिन्हें समुदाय की सेवा के लिए OAM से सम्मानित किया गया है। उषा चंद्रा का ऑस्ट्रेलियाई सफ़र कैसे शुरू हुआ और आज भी ऑस्ट्रेलिया में चल रहे माइग्रेशन विवाद को किस नज़रिए से देखते हैं, आइए सुनते हैं नताशा कॉल के साथ हुई उनकी इस बातचीत में।
14: नमस्कार।

0: ताओ, मैं हूँ नताशा कॉल SBS हिंदी टीम से। तो आज हम जुड़ रहे हैं एक बहुत ही खास मेहमान से, जिन्हें इस साल किंग्स बर्थडे ऑनर्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। किंग्स बर्थडे ऑनर्स 2026 में सम्मानित किए गए लोग उन ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने वर्षों नहीं बल्कि दशकों तक अपने समुदायों की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन लोगों के प्रयासों ने समुदाय को मजबूत बनाने, भाषाओं और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने या शिक्षा को बढ़ावा देने और सुशासन को सशक्त करने में अहम भूमिका निभाई है। हर वर्ष की तरह इस बार भी ऑस्ट्रेलिया सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों और पृष्ठभूमियों से जुड़े उन लोगों को सम्मानित किया है जिनके कार्यों ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में योगदान दिया है। इस सूची में भारतीय समुदाय के कई सदस्य भी शामिल हैं जिन्होंने अपने समर्पण और सेवा के माध्यम से एक छाप छोड़ी है। इन्हीं सम्मानित व्यक्तियों में क्वींसलैंड की उषा किरण चंद्रा का नाम भी शामिल किया गया है। उन्हें राज्य में भारतीय समुदाय के लिए उनके लंबे समय से किए जा रहे योगदान और सेवाओं के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल प्रदान किया गया है। तो आइए जुड़ते हैं उषा किरण चंद्रा से। SBS हिंदी प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है उषा जी।
1: थैंक यू
0: उषा जी। इस साल आपको किंग्स बर्थडे ऑनर्स लिस्ट में शामिल किया गया है, कैसा लग रहा है आपको?
1: मेरे को अपना नाम सुन के बहुत अजीब लग रहा है कि अब बहुत आई एम वेरी प्राउड कि हाँ कि मेरा नाम भी उसमें शामिल हो गया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। पहले पहले तो मैं अपने माता पिता को धन्यवाद करती हूँ और फिर प्रभु जी को धन्यवाद करती हूँ और जितना जितना पीपल मेरे को सपोर्ट किए। ये मेरा अवार्ड ही नहीं है, सारे जनता की अवार्ड है। यहाँ जो क्वींसलैंड में बसे हुए हैं सभी का सहायता से मुझे ये अवार्ड मिला है।
0: उषा जी, हमें बताएं कि आपका ऑस्ट्रेलिया का सफ़र कैसे शुरू हुआ, आपका बाई यहाँ पर, और किस प्रकार आप कम्युनिटीज़ के साथ जुड़ी और क्या क्या काम किए आपने उनके साथ?
1: जी, पहली बार तो मैं इंडियन कम्युनिटी के लिए बहुत काम किया है बट मल्टीकल्चरल कम्युनिटी के लिए भी बहुत काम किया है। 1988 से जब मैं यहाँ शुरू की, मैं सिडनी में रहती थी तो हॉलीडेज को मैं यहाँ आई ब्रिस्बेन में, तो मैंने अपना रियल एस्टेट बिजनेस शुरू किया 1989 में।
0: अच्छा।
1: With one office, then 1989 में शुरू किया, फिर 1993 में अपना खुद का ऑफिस खोला मैंने, फर्स्ट ऑफिस, फिर 95 में, फिर 97 में, फिर 99 में, फिर 2005 में मेरे पास खुद का 5 रियल स्टेट ऑफिसर्स था।
0: अच्छा।
1: और मेरे काम लगभग 80-90 लोग मेरा काम करते थे टीम में।
0: अच्छा जी।
1: सभी का सहयोग था। कुछ मोस्टली मेरे एम्प्लॉइज ऑस्ट्रेलियन पीपल थे उस समय। अभी तो मेरे अबाउट 4-5 लोग इंडियंस भी है यहाँ काम करते हैं। तो सभी को मैंने सिखाया, कुछ कुछ लोग अपना शुरू कर चुके हैं मेरे साथ जुड़ के। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देश के लोग आते हैं और देन वो भी अपना अपना तरक्की करना चाहते हैं। एंड आई बीन अ मेंटर फॉर लॉट ऑफ पीपल एज वेल,
0: जी
1: गाइड करती हूँ एंड फॉर थ्रू आवर कम्युनिटी सर्विस और बिजनेस सर्विसेज एज वेल।
0: जी
1: 2003 में हमने अपना शुरू किया था ब्रिस्बेन इंडियन टाइम्स, हमारा न्यूज़पेपर था।
0: अच्छा।
1: 2003 में 21 इयर्स हमने उसको रन किया। 2 years ago हमने उसको बेच दिया किसी और को।
0: जी
1: और 2014 में हमने अपना ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो शुरू किया था।
0: अच्छा।
1: तो उसको भी दोनों न्यूज़पेपर रेडियो दोनों साथ में थे तो हमने दोनों एक ही बंदा को बेच दिया बिकॉज मेरे हस्बैंड का हेल्थ थोड़ा डिटोरिएट हो गया था।
0: जी, और उषा जी, आप जैसे बता रही थी कि आपकी पैदाइश फीजी की है लेकिन आप वापस भारत गई।
1: जी जी, मैं गई अपना स्टडीज करने और वहाँ का सभ्यता संस्कार भी मुझे सीखना था। थोड़ा सा हिंदी भी मैं बोल लेती हूँ।
0: अच्छा।
1: गुजराती भी बोल लेती हूँ, बंगाली भी थोड़ा सा बोल लेती हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा कुछ सभी भाषा, पंजाबी तो बहुत अच्छा से मैं मुझे समझ में आती है, पहले तो बहुत अच्छा से बोल भी लेती थी। अभी मेरे पंजाबी क्लाइंट्स बहुत है यहाँ,
0: अच्छा।
1: इंडियन क्लाइंट्स, तो गुजराती में कोई बात करता तो मैं गुजराती भी अंडरस्टैंड करती हूँ। फिर मैं फीजी गई, वहां से टीचिंग करके फिर ऑस्ट्रेलिया आ गई।
0: और जब आप ऑस्ट्रेलिया पहुंची

0: तो यहाँ किस प्रकार की आपको कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी या चैलेंजेस थे जो आपके सामने आए जब आपने यहाँ पे शुरुआत की?
1: चैलेंजेस तो बहुत था। जब मैंने रियल एस्टेट शुरू किया 1989 में, वहाँ हमारे कलर्ड पीपल कोई नहीं थे, सब वाइट पीपल थे। जहाँ मैं फर्स्ट अपना जॉब शुरू किया,
0: अच्छा
1: बहुत अच्छा, बहुत मेरे मेरे को बहुत अच्छा से स्वागत किया। जो मेरा बॉस था उसने मेरे को ट्रेनिंग किया।
0: अच्छा
1: मैं वर्क की विद 9 white men, ओनली
0: अच्छा
1: फीमेल विद कलर्ड स्किन, बट आई गोट अ लॉट ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट मेरे को बहुत लोग दिया।
0: जी
1: एंड वहां से फिर मैंने अपना 93 में मैंने खुद का अपना ऑफिस शुरू किया। मैं एक और एलचेहू का ग्रुप के साथ भी काम की, जस्ट टू सी कि कैसे ये लोग करते हैं, कैसे फ्रेंचाइज ग्रुप वर्क करता है। देन आई डिड 610 hours ऑफ टेफ कॉलेज एज वेल एट नाइट।
0: अच्छा
1: दो बच्चों का, छोटे छोटे मेरे दो बच्चे थे,
0: जी
1: तो मैंने अपना स्टडीज, मेरे हस्बैंड भी अपना स्टडीज फिर टाइफ में किया उसने भी,
0: जी
1: तो हमने हमने दो हम दोनों शाम को एवरी डे टाइफ कॉलेज में ही बैठते थे।
0: अच्छा उषा जी, ये बताइए कि जब किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को यह सम्मान दिया जाता है, क्या मायने होते हैं इस सम्मान के? आपके आपके लिए ये इस सम्मान का क्या मायने है, क्या अर्थ है? और आप बता रही थी कि आपके हस्बैंड को भी ये सम्मान 2021 में दिया गया, तो क्या मायने हैं इस सम्मान के आपके लिए, आप दोनों के लिए?
1: आई फील वेरी प्राउड, बट विथ प्राइड कम्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एज वेल।
0: जी
1: सो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हाँ, आई एम प्राउड बट आई हैव गॉट अ लॉन्ग वे टू गो। अभी बहुत काम करना है हमें।
0: जी
1: ऑर्डर
0: और
1: ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल तो बहुत अच्छी बात है,
0: जी
1: सभी लोग को नहीं मिलता है। सम्मान तो बहुत बड़ा सम्मान मेरे को मिला है, बट मेरे को ये भी करना है कि और हमारे जो लोग हैं उनको और कैसे हम बढ़ावा दें, आगे कैसे उनको गाइड करें।
0: अच्छा, आप जैसा बता रही हैं कि जब आप आई थी यहाँ पर शुरू शुरू में और जब आपने अपना जॉब शुरू किया था, आपको काफ़ी सपोर्ट मिला लोगों से, ऑस्ट्रेलियाई लोगों से, लेकिन आज जब आप एंटी इमिग्रेशन भावनाएं आसपास देखती हैं तो आपको कैसा महसूस होता है?
1: देखो, आजकल के थोड़ा परिवर्तन चेंज हुआ यहाँ के लोग का, बिकॉज हमारे जो लोग आते हैं तो अगर घुल मिल जाए सब उसमें तो बहुत अच्छी बात है।
0: जी
1: बट काफी लोग अब तो घुल मिल गए हैं, बट इनिशियली जब हमारे स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे थे तो उस समय काफी प्रॉब्लम्स होती थी, बट अब तो काफी लोग दे हैव एक्सेप्टेड कि हाँ,
0: अच्छा
1: इंडियंस आर हियर, दे आर बिल्डिंग एंड लॉट ऑफ पीपल। आई मीन, वी हैव गॉट मिनिस्टर्स, वी हैव गॉट काउंसलर्स, वी हैव गॉट लॉट ऑफ हाई प्रोफाइल बिजनेस पीपल।
0: जी
1: सब इंडियन ओरिजिन के हैं और मल्टीकल्चरल ओरिजिन से है।
0: जी जी
1: तो मुझे तो लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने हमें सबको बहुत ही अच्छा टाइम दिया है, हमें अपना देश दिया है कि हम भी कुछ करें, और देश के लिए, जहां पे आप रहते हो उस देश के लिए भी करना चाहिए।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी आज हमसे जुड़ने के लिए, और एक बार फिर हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां ये सम्मान पाने के लिए।
2: और क्योंकि इतनी प्यारी बातचीत रही है तो ये गाना तो बनता ही है। और इस गीत के साथ मेरे पास सुरेंद्र जी का संदेश आया है, जो बता रहे हैं कि उनके जीवन में प्रेरणा का स्रोत कौन है। और वो कहते हैं, माय वाइफ प्रीतपाल कौर चावला इंस्पायर्स मी एवरी टाइम। आज मैंने आपसे पूछा है कि वो कौन है जो आपको हमेशा प्रेरित करते हैं। 0439-799-767 हमारा नंबर है, ज़रूर बताइएगा।

0: और इसी के साथ समय एक छोटे से अंतराल का, अंतराल के उस पार आपकी मुलाकात करवाएंगे कपिल देव से और जानेंगे कि क्या है उनका नया ऑस्ट्रेलिया कनेक्शन। बने रहिए SBS हिंदी पर और मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या है वो चीज़ या कौन है वो व्यक्ति जो आपको हमेशा इंस्पायर करते हैं, हमेशा ऐसा लगता है कैसे कर लेते हैं ये। तो 04397997667 हमारा नंबर है, ज़रूर भेजिएगा संदेश। एक छोटा सा अंतराल, फिर होती हूँ हाजिर, कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा SBS हिंदी पर।
1: अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्रों से लेकर क्लासिकल कल्ट फिल्मों तक, विश्व स्तरीय नाटक से लेकर गुदगुदाने वाली हास्य फिल्मों तक, देखिए SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर। पूरी दुनिया की कहानियों का एक संसार SBS वर्ल्ड मूवीज पर, देखिए सातों दिन 24 घंटे चैनल 32 पर मुफ्त या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम करें।
2: SBS South Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast, and the hottest tracks on SBS South Asian radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS Audio app or website.
3: SBS Audio app आपके फोन पर प्रोग्राम और पॉडकास्ट सुनने का सबसे अच्छा तरीका है। SBS Audio app एकदम मुफ्त है, इसे App Store या Google Play से डाउनलोड करें।
1: डेडलाइन पर दुनिया भर के लोग और कहानियाँ, SBS का पुरस्कार विजेता वृत्त चित्र शो, देखिए डेडलाइन मंगलवार 9:30 SBS पर और किसी भी समय SBS ऑन डिमांड पर। SBS ऑन डिमांड पर सैकड़ों टीवी शो और फिल्में मुफ्त में उपलब्ध हैं। कहानियों की इस दुनिया को अपने फोन, स्मार्ट टीवी, टैबलेट या लैपटॉप पर देखें। आज ही SBS ऑन डिमांड ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं।
4: Like your music? We have got you covered on SBS South Asian. There are shows like The Bollywood Session every morning and evening, 3 hours every day of just the hits from Bollywood. Need a party playlist? There's a Desi dance party on Friday and Saturday nights. It's your weekend soundtrack. Enjoy Punjabi music. Don't miss Bhangra hits on weekend afternoons. Find your next favorite SBS South Asian show on the SBS Audio app, website, or SBS On Demand.

0: sbs.com.au/gujarati તમારું હોમ પેજ બનાવો. તાજા સમાચારો, સાંપ્રત ઘટનાઓ તથા મનોરંજન માટે sbs.com.au/gujarati ની મુલાકાત લો.
1: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर. हमारा पेज लाइक करें. SBS हिंदी फेसबुक पर भी है.
2: ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है. और आप और मैं यानी वृषाली जैन आज चर्चा कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जो आपको बहुत इंस्पायर करते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि इफ़ देव गॉट इट डन हम भी कर ही लेंगे, यू नो, या इन्होंने जिस तरीके से किया है काश कि हम इस तरीके से कर पाते. 04397997 हमारा नंबर है. और इसी कड़ी में आज एक और चर्चा करते हैं भारतीय क्रिकेट दिग्गज कपिल देव की. ऑस्ट्रेलिया फेडरल सरकार के सहयोग से कपिल देव की संस्था खुशी भारत में शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए मनोबल इनिशिएटिव लेकर के आ रही है. ऑस्ट्रेलिया का ये कनेक्शन कैसे बैठा, कैसे फेडरल सरकार ने उनकी मदद करने की कोशिश की, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रिचर्ड माल्स इस इनिशिएटिव की शुरुआत के लिए दिल्ली पहुंचे, तो क्या कुछ हुआ, आइए कपिल देव की जबानी ही सुनते हैं कि क्या है मनोबल, किस तरीके से ऑस्ट्रेलियाई सरकार इसमें जुड़ी और क्या कुछ आगे होने वाला है.
3: जी, आई एडमायर ऑस्ट्रेलिया क्योंकि उनका सबसे बड़ा है कि वो खेलने में बहुत बड़ी रुचि लेते हैं और जो भी काम करते हैं वो इस तरह करते हैं कि इसको खेल की तरह देखा जाए.
2: क्यों कहा कपिल देव ने ऐसा? ऐसे तो ऑस्ट्रेलिया और कपिल देव का नाता बहुत पुराना है, लेकिन किस नई वजह से जुड़ रहे हैं कपिल देव और ऑस्ट्रेलिया एक साथ, इस पॉडकास्ट में आज जानेंगे यही सब.
4: हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय क्रिकेट के दिग्गज कप्तान कपिल देव. लेकिन आज हम लोग क्रिकेट पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिससे आप केवल क्रिकेटर नहीं कुछ भी बन सकते हैं, क्योंकि कुछ भी बनने के लिए आपको आवश्यकता होती है अपने गुरु की. और ऑस्ट्रेलिया की सरकार के साथ किस तरीके से कपिल देव की एनजीओ ने एक साझेदारी करी है और किस तरीके से ये भारत में शिक्षकों की मदद करने वाला है, हम चर्चा इस पर कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर SBS हिंदी पर.
3: थैंक यू वेरी मच. शुक्रिया, मेहरबानी.
4: सबसे पहले तो कपिल जी, हमको ये बताइए कि ये मनोबल इनिशिएटिव क्या है और क्यों आपने इसको बढ़ावा दिया ऑस्ट्रेलियन सरकार के साथ ही, क्यों?
3: नो, हम तो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कौन चैरिटी की हेल्प कर सकता है. एंड यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आगे बढ़ के आई, तो उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ. खुशी ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टार्ट की थी 20 साल पहले. मैं जो उसका एक समय प्रेजिडेंट था, अभी मैं पेट्रन हूँ, उसका पार्ट हूँ. खुशी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर हम बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं और अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं और उसके साथ उनकी सेहत का ख्याल रखते हैं. आई थिंक इनिशिएटिव हमारे ऑफिस ने लिया था और अच्छा लगा कि ऑस्ट्रेलियन सरकार हाई कमिश्नर ने यहाँ पर बड़ा मेहनत की हमारे साथ और इस मुकाम पर पहुंचे है कि आज ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इज हेल्पिंग अस आउट फाइनेंशियली. वैसे भी
4: जी, तो हम अपने श्रोताओं को बताते चले कि खुशी यानी किनशिप फॉर ह्यूमैनिटेरियन सोशल एंड होलिस्टिक इंटरवेंशन इन इंडिया, अब जो ये इनिशिएटिव लेकर के आ रही है इसका नाम है मनोबल, जो शिक्षकों के भी मेंटल हेल्थ और वेलबींग पर फोकस कर रहा है. तो कपिल जी, क्यों शिक्षकों को आज के समय में इस सपोर्ट की या इस रिकॉग्निशन की आवश्यकता है?
3: जी, आज के दौर पर जरूरत है, डेफिनेटली है. शायद आज से 15-20 साल पहले हम कभी मेंटल हेल्थ के बारे में चर्चा नहीं करते थे, आज जरूरत है क्योंकि दुनिया एक तो बहुत छोटी हो गई है ये मोबाइल के आने से, इंटरनेट के आने से. उसके बाद लोगों को नॉलेज है लेकिन उनके पास बहुत फ्री टाइम भी हो जाता है कि क्या करना चाहिए. तो ये सब तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए यही कह सकते हैं कि आज मेंटल हेल्थ is a very strong part.
4: हम कई बार ये नोटिस करते हैं कि खासकर शिक्षकों के मामले में कि वो अपनी वेलबींग को या अपनी मेंटल हेल्थ को पीछे रख

0: करके दूसरों की सहायता करते हैं। ये एक काफी प्रेशर वाला जॉब है, आप खुद एक पब्लिक लाइफ फिगर हैं, लंबे समय तक एक ऐसे करियर में रहे हैं जहां पर बहुत प्रेशर रहा है, तो क्या आप कहेंगे इन एजुकेटर्स से कि किस तरीके से अपने स्ट्रेस और बर्नआउट को मैनेज कर सकते हैं?
1: जी, एक तो आजकल के युवा को हम बिजी रखना चाहते हैं, उनको कोई ना कोई काम करना चाहिए, जब बहुत टाइम फ्री होता है तो उनका दिमाग बहुत तरफ चला जाता है, तो इसलिए हमारा जो मेन मुद्दा ये है कि हम इन बच्चों को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो खेलों में हो या पढ़ाई में हो या साइंस में हो, क्योंकि इनके पास बहुत अच्छा सोच है, युवा सोच है, लेकिन उसके बाद उनको डायरेक्शन दिखाने की बहुत जरूरत है आज।
0: जी, तो आपके क्रिकेट करियर के दौरान कपिल जी, कौन से आपके ऐसे टीचर्स और मेंटर्स रहे हैं जिनको आप आज भी सोचते हैं तो आपके लिए प्रेरणा का स्रोत रहते हैं कि वो जिस तरीके से फंक्शन करते थे वो आज के दौर में देखने को नहीं मिल रहा है?
1: आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम पता नहीं देखने को मिलता है कि नहीं, मैं क्रिकेट छोड़ चुका हूँ। हाँ, आपके सीनियर प्लेयर बहुत बड़े मेंटोर होते हैं कि उनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं, तो इसलिए मेरा मानना तो यही है कि अगर आप अपने सीनियर से या जिनके पास एक्सपीरियंस है उनसे बैठ के समय बिताएं और सीखने की कोशिश करें। ये मैं मानता हूँ युवा आज बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, लेकिन उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है जो सीनियर्स के पास है, तो मेरे लिए तो सीनियर ही गुरु हैं, उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो।
0: 1983 वर्ल्ड कप की विनिंग टीम के कप्तान के तौर पर टीम वर्क को लेकर, कॉन्फिडेंस को लेकर, या फिर मुश्किल सिचुएशन से आगे बढ़ने को लेकर के आपके अपने क्या लेसन रहे जो आपको लगता है कि आज की रोज की जिंदगी में भी उतने ही काम आते हैं?
1: नेवर गिव अप, आप हार नहीं माननी, यही सबसे बड़ी सीख मेरे को मिली अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से या अपने बड़ों से, कि आप कभी हार नहीं माननी। हार कमजोर आदमी मानता है, शायद आपको उस मुकाम तक ना पहुंच पाओ जहां पर आप सोचते हो, लेकिन अगर आप चलना शुरू करोगे तो एक ना एक मुकाम तक जरूर पहुंचोगे, और कमरे में बैठ के सिर्फ बातें करना और सोचते रहना और शुरू नहीं करना, वो कहते हैं ना जिंदगी में पहला स्टेप सबसे मुश्किल है और सबसे आसान है, इसलिए आसान है कि लेना बड़ा आसान है, लेकिन जब एक बार जर्नी शुरू हो जाती है, सफर शुरू हो जाता है, फिर आदमी किसी ना किसी मुकाम पर जरूर पहुंच जाता है।
0: कपिल जी, आपने मनोबल इनिशिएटिव को लॉन्च किया ऑस्ट्रेलिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रिचर्ड माल्स के साथ, आपको क्या लगता है इंटरनेशनल पार्टनरशिप इस तरीके के ग्रोथ इनिशिएटिव्स के लिए कितने जरूरी हैं, और ऑस्ट्रेलिया की कौन सी ऐसी सोच है जो आपको लगता है इंडिया के शिक्षकों को, खासकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जहाँ पर आप ये इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं, वहाँ मदद करेगी?
1: जी, आई एडमायर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उनका सबसे बड़ा है कि वो खेलने में बहुत बड़ी रुचि लेते हैं और जो भी काम करते हैं वो इस तरह करते हैं कि इसको खेल की तरह देखा जाए, तो इसीलिए ऑस्ट्रेलियन खेल चाहे कोई भी खेल हो बहुत बड़ा है, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ये सीख सके कि खेलने में बहुत दम है। ये चीज आज नहीं, पिछले 40 साल से मैं एडमायर करता हूँ ऑस्ट्रेलियन के, ऑस्ट्रेलियन थॉट प्रोसेस की, सोच की, क्योंकि उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, और हमारी यंग कंट्री है। हाँ, हमारा इतिहास बहुत पुराना है लेकिन यंग कंट्री है, देखा जाए कि आजादी मिले हुए बस 70-80 साल हुए हैं, और 70-80 साल में हमने बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन नई जनरेशन जो हमारे पास है वो बहुत कुछ और भी कर सकती है, तो उनको सही डायरेक्शन पे लाना बहुत जरूरी है, और अगर दूसरे लोगों की सोच हमारे बच्चों को समझ आए तो वो उसका फायदा ही हो सकता है, नुकसान नहीं हो सकता।
0: और इंडियन डायस्पोरा दुनिया भर से सर एजुकेशन को लेकर के और सामुदायिक विकास यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट को लेकर के बहुत एंगेज है, तो ऐसे में जो डायस्पोरा है, जो ओवरसीज इंडियंस हैं, वो किस तरीके से मदद कर सकते हैं भारत में सामुदायिक विकास के लिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए?
1: आई थिंक यही, जैसे हम खुशी हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई हेल्प कर सकता है, इंडियन जो है अब्रॉड रहते हैं वो बहुत सफल हैं, उन्होंने बहुत कामयाबी देखी है, अगर कभी कभी मन में हो कि हम वापस अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं तो अच्छा लगता है कि उनकी सोच भी, जब भी हम कुछ लोगों को मिलते हैं, जब हम ट्रेवल करते हैं बाहर, तो उनको कुछ ना कुछ हिंदुस्तान के लिए करना अच्छा लगता है, क्योंकि

0: एक बार आप कमा लेते हो तो यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी, और जो इंसान सोसाइटी को वापस करता है आई थिंक वो अपने आप में एक बड़ा बन जाता है।
1: तो सर मेरा आपसे आखिरी सवाल बस इतना रहेगा कि जब आप नेक्स्ट जेनरेशन को देखते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, कौन सी एक ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा उम्मीद देती है, और कौन सी एक ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि ये इस चीज को बेहतर करने की जरूरत है या इसके पुराने तरीकों को वापस से लाने की कोशिश करनी चाहिए?
0: जी, इनका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है लेकिन सोच बहुत छोटी रह जाती है। उनका क्या है कि रिजल्ट चाहते हैं कि 2 मिनट में मिल जाए। कुछ चीजों में समय बिताना बहुत जरूरी है। हम तो यही चाहते हैं कि पुराने जो लोग थे वो समय देते थे, आज के बच्चों के पास समय नहीं है, और अगर ज्यादा से ज्यादा वो अपने मोबाइल पे ही रहते हैं, जो ठीक है आपको नॉलेज मिल रही है लेकिन आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो उससे और भी बेहतर होगा।
1: पक्का लास्ट क्वेश्चन है, दैट वुड बी, आपको जब आज स्ट्रेस होता है या बर्नआउट होता है आप क्या करते हैं? What is your way of unwinding?
0: I think you have to plan your head. मैं स्ट्रेस लेता ही नहीं। हाँ, अच्छा टाइम भी आता है, 100 भी बनाते हो आप, 0 भी बनाते हो, लेकिन बेसिक है कि जाके ड्राइंग बोर्ड पे बैठो, कहाँ पर गलती है और क्या आप कर सकते हो। हर बार किसी क्रिकेटर का भी 100 नहीं बनता। हर बार जो आप चीज स्टार्ट करते हो ये नहीं हो सकती कि उसमें कामयाबी मिले, लेकिन अगर आपको कामयाबी नहीं मिलती तो इसका मतलब आप अपने मन को नहा छोड़े कि हाँ छोड़ो ये कुछ नहीं है। नहीं, सीखना जिंदगी का सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या आप सीख रहे हैं। और मैं अपने आप में ये सोचता हूँ कि मैं स्ट्रेस लेना पसंद नहीं करता, कोशिश करना मेरा काम है, बाकी रिजल्ट सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता।
1: थैंक यू, ये कितनी अच्छी बात है सर, एंड आई होप दैट हेल्प्स द पीपल हु आर लिसनिंग टू अस, और इस इनिशिएटिव के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई।
0: जी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
2: और दोस्तों इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार सुनेंगे भारत से आने वाली एक ऐसी खबर जहां पर सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के भरोसे और बलबूते पर एक महिला ने अपनी पूरी जिंदगी को दोबारा खड़ा किया। फैसल फरीद की रिपोर्ट रहेगी, उससे पहले मेरे पास दीवा भारद्वाज का एक संदेश है कि हेलो वृषाली जी, माय मॉम्स फेवरेट क्रिकेटर इज कपिल देव, माय मॉम्स टू दीवा, मतलब जब उन्हें पता चला था कि मैं कपिल जी से बातचीत करने वाली हूँ वो इतनी एक्साइटेड थी कि मुझे उनसे कहना पड़ा था प्लीज़ थोड़ा सा रिलैक्स करें। तो मदर्स आर स्पेशल, ऑफ कोर्स दे आर स्पेशल, एंड विच इज़ वाई दे आर द बिगेस्ट इंस्पिरेशनल सोर्स। वो बहुत बड़ी प्रेरणा की स्रोत होती हैं, क्योंकि आपकी माँ, आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, आप एहसास करते हैं कि एक्चुअली उन्होंने आपके लिए चीज़ों को कितना नॉर्मलाइज़ किया होता है, कितना सामान्य किया होता है, जबकि उन्होंने अपने स्तर पर कितनी सारी चीज़ों को संभाला होता है जो कई बार कितनी ओवरवेलमिंग रही होंगी, कितने दबाव रहे होंगे, पर उन्होंने कभी आप तक वो आने नहीं दिए। तो माएँ तो हमेशा खास होती हैं और इंस्पिरेशन का एक बड़ा सोर्स होती हैं। आपके लिए इंस्पिरेशन का क्या सोर्स है, कौन है, बताइए मुझे 04397997667 पर। फैसल फरीद की इस खबर के साथ लौटती हूँ एक छोटे से अंतराल के बाद, बने रहिएगा SBS हिंदी पर।
3: SBS फूड के साथ पूरी दुनिया को अपनी रसोई में ले आइए। SBS फूड पर 7000 से भी ज्यादा रेसिपी देखें, साथ ही हाउ टू लेख, वीडियो निर्देश और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/food पर जाएं।
4: Like your music? We have got you covered on SBS South Asian. There are shows like The Bollywood Session every morning and evening, 3 hours every day of just the hits from Bollywood. Need a party playlist? There's a Desi dance party on Friday and Saturday nights. It's your weekend soundtrack. Enjoy Punjabi music. Don't miss Bhangra hits on weekend afternoons. Find your next favorite SBS South Asian show on the SBS Audio app, website or SBS On Demand.
5: SBS आपके तैयार होते ही तैयार है। Alexa, Google Home या Apple Smart Speaker के साथ जुड़े रहना आसान है। सुनिए ताजा खबरें, विचार और कहानियाँ SBS हिंदी से जब चाहें। बस कहें प्ले SBS हिंदी पॉडकास्ट। SBS ऑडियो, संगीत, रेडियो और पॉडकास्ट आपकी लय से मेल खाते हुए।
6: जानिए SBS के टीवी और रेडियो चैनलों पर क्या चल रहा है और क्या आने वाला है। SBS

0: sbs.com.au/guide पर जाएं।
1: SBS Kickoff.
2: A new music station celebrating football anthems from around the world.
3: It's time for Africa.
1: It's live now
2: on DAB Radio, the SBS audio app.
3: We got the game
1: online and SBS on demand.
4: अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है।
5: ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है एसबीएस हिंदी पर। आप सुन रहे हैं वृषाली को और हमने कार्यक्रम के शुरू में चर्चा की थी कि शार्क अटैक से बचने वाले सैम नाय किस तरीके से अपने संस्कृति से जुड़ करके वापस से खुद को खड़ा कर रहे हैं। और अब हम चर्चा कर रहे हैं कोयम्बटूर की राधिका जे ए के बारे में, क्योंकि ब्रिटल बोन डिजीज से जूझते हुए उन्होंने पुराने अखबारों से 3,000 से अधिक गुड़ियाँ बनाई जो अब भारत समेत कई देशों में एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो क्या है ये कहानियां, ये सुनते हैं फैसल फरीद की इस रिपोर्ट में।
6: चौबीस वर्षीय राधिका जे ए कोयम्बटूर की रहने वाली हैं और अपनी गुड़ियों में जीवंत रंग भरने में लगी रहे। उनकी गुड़ियां असाधारण हैं, वे पुराने अखबारों से बेहद खूबसूरती से बनाई जाती हैं और उन पर बिना चेहरे वाला मास्क होता है। ये गुड़िया बनाना एक लंबी प्रक्रिया है। राधिका एक गुड़िया बनाने के लिए केवल 2 घंटे ही बैठ सकती हैं, क्योंकि उन्हें 6 साल की उम्र में ही ब्रिटल बोन डिजीज हो गया था और उन्हें नियमित स्कूल छोड़ना पड़ा। बार बार फ्रैक्चर, कई सर्जरी और गंभीर स्पंडलाइटिस भी उनके हौसले को नहीं तोड़ सके। राधिका ने जीवन की बाधाओं को हराकर पिछले 5 वर्षों में 3,000 से अधिक गुड़ियां बनाई हैं। पहला बड़ा मोड़ तब आया जब 10 साल की उम्र में चार दीवारी के भीतर लॉकडाउन जैसी जिंदगी और अकेलेपन के कारण वो अवसाद से गुजरी। उन्होंने डॉक्टर की मदद ली, जिन्होंने उन्हें वही करने की सलाह दी जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था। ड्राइंग शुरू करने के बाद उन्हें बेहतर महसूस होने लगा। 2016 में उन्होंने एक वॉल हैंगिंग का वीडियो देखा, जिसके लिए उन्होंने बुनियादी सामान खरीदकर अपनी पहली वॉल हैंगिंग बनाई। जल्द ही लोगों ने उनके कमरे की दीवारों पर उनका काम देखा तो पड़ोसी पूछताछ करने लगे। उन्होंने वॉल हैंगिंग 100 रुपए में बेचना शुरू किया और आज वही सिलसिला जारी है। 2 साल बाद साल 2018 में उनके भाई राजमोहन के दोस्त ने उन्हें एक वीडियो ट्यूटोरियल दिखाकर गुड़िया बनाने के लिए कहा। वो उत्साहित नहीं थी, लेकिन भाई राजमोहन के जोर देने पर उन्होंने 2 दिनों में काम पूरा कर लिया। आगे प्रोत्साहन मिलने पर उन्होंने अलग अलग परिधानों वाली 10 और गुड़ियों के साथ प्रयोग किया। उनकी किस्मत तब बदली जब उन्होंने इन गुड़िया को एक ऐसे एक्सपो में प्रदर्शित करने का फैसला किया जो कला को बढ़ावा देता था। अगले 10 दिनों में उन्होंने 20 से अधिक गुड़िया प्रति गुड़िया 100 रुपए की मामूली कीमत पर बेच दी। 2018 के अंत तक राधिका और उनके भाई राजमोहन ने अपनी गुड़ियों को प्रमोट और बेचने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाने का फैसला। राधिका को सिर्फ तमिल भाषा आती है, हिंदी और इंग्लिश नहीं आती। उनके भाई राजमोहन के माध्यम से उनसे बात हुई। राजमोहन ने इस अनोखी डॉल्स की दुनिया के बारे में बताया।
7: तो माय सेल्फ राजमोहन, तो वी आर फ्रॉम कोयम्बटूर तमिलनाडु एंड माय सिस्टर मिस राधिका, शी इज स्पेशलाइज्ड इन मेकिंग न्यूज़पेपर डॉल्स एंड व्हेन शी वाज इन अर्लियर डेज सिंस व्हेन शी वाज इन चाइल्डहुड, सो हर लाइफ वाज इन अ नॉर्मल स्टेज, नॉर्मल वे ऑफ लाइफ। आफ्टर टिल एज ऑफ 5 शी वाज इन अ नॉर्मल कंडीशन ओनली। आफ्टर दैट she met with a small fracture in one leg and it got fractured. So then due to the continuous medical, after some surgeries, we get to know that her bone have like brittle bone kind of, so easily get a fracture if it hit anywhere lightly, slightly. So that is the major issue of her. So due to that, so she was bedridden and then she was in home only. She was not able to go to school or in, outside. After UKG, so she was in home only till the age of 15 years old. She was in home only. My parents, we are in a lower middle class family. In that time, we are not able to accommodate any tuition teachers or anything. So to run our daily regular requirements is more itself. It's very difficult. So in that time, our ultimate, my parents' ultimate goal is to make

हस्ती यार जैसी होशियारी ये फिजूल है, तेरा ख्याल ठेकेदार है तू वक्त का, बदल के रहता है ये वक्त का उसूल है। हरकतों पे कब तलक मेरी नजर रखेगा तू, करते करते पहरेदारी एक दिन थकेगा तू। मैं मगर नहीं थकूंगा, फैसला ये है किया गलत को भी सही तरह से कर।

कभी हीर तो कभी रांझा बेवफा हुआ था, मैंने ये बस कहानियों में सुना हुआ था। तेरे बाद ये धड़कता हुआ पुर्जा वहां भी ना लगा जहां लगा हुआ था, उतने ही करीब आ गई।

0: जब प्यार था तब बात और थी, अब तो आप व्यापार कर रहे हैं, तभी तो जाते वक्त नुकसान नफा बोल दिया था। आप कभी अपनी कमियां ही नहीं बोले, वरना खुदा के सामने कबूल है तो तीन दफा बोल दिया था, तीन दफा बोल दिया था। जैसे हमें कोई नहीं मिला, आपको भी सभी नहीं मिलेंगे। खुदा हाफिज औजला जी, आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे।
1: SBS South Asian.

ये जो जगह जगह दर्द की कहानियां सुनाता है, ये जो जगह जगह दर्द की कहानियां सुनाता है, फरेबी है, सब झूठ बताता है।

करती हूँ, जब तक जी रही हूँ ये दुआ करती हूँ, तू हर रोज मरे मैं जिस तरह मरती हूँ।

0: अरे घूटो में स्वैग है, अरे घूटो में स्वैग है, अरे घूटो में स्वैग है, अरे घूटो में स्वैग है।
1: बॉय बादशाह
0: बिन ट्राय रहे फ्लाई बॉय, ये हम लाइफ पे हाई बॉय, ये तू रख तेरी राय बॉय, ये हमसे जल्द

0: अरे घूट में स्वैग है। अरे घूट में स्वैग है। अरे घूट में स्वैग है। अरे घूट में स्वैग है।
1: SBS South Asian. Your news from here and hits from home.

कांटे कांट मेरे दिल पे जुबान है, भेद दिल ये ऐसा कमाल है, सारा पूछूं आज किसका ख्याल।

उसके इशारों पे महल चला। जब वो चले संसार झुके, जब वो मुड़े तरनी बहे, जब हाथ उठाए आंधी रुके, जब पल के झुकाए तो वक्त रुके। डरता करता

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: ऐसा है असली चेहरा उसे सब है पता चाल है गहरा उसे कुछ न छुपा दिल है जो ठहरा उसे नहीं है पता क्या तेरी माया जरा मुझे भी बता ढूंढूं मैं उसको कहां होठों पे जिसके लिपटा जहां इतना दर्द क्यों मैंने सहा जब मिलने ही थे दोनों जहां रुक गई मेरी सांस भी महसूस करने की आस भी खुल जा मुझ में जैसे चाशनी कट गई ये साली रात भी

के तुझे भी कम ना रहे जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे But I want you to stay

खुशी के मैं बांटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे, प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay।

0: अरे वीडियो ट्रेंड तेरा, लौंडा बनना चाहे बेबी बेस्ट फ्रेंड तेरा, जैसे कमर हिलाए कभी दाएं कभी बाएं, तेरा स्वैग और नखरा भी एंड तेरा।
1: अच्छा सुन, तेरी बातें टू मच है, पर लौंडे का स्वैग देसी टच है, तेरे यार का नाम बोलो शहर में, मम्मी कसम बेबी बात।

के अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: आ गया।
1: आपके लिए आए स्पेशली।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: कर्मा और रफ्तार, ये गाना उनके लिए है जो मेरे साथ स्कूल में थे।
0: कैसे भाई हो?
1: और उनके लिए जो अभी भी स्कूल में है।
0: बढ़ो और बढ़ो।
1: बाय।